फुंका हा मार्केटिंग ताको बखु एफएम उजेंतनी फुंका चंगनी पांदाव नरक जतन लामछुगो दिनेनि कक बरक पांदाव जों सालकामा पांदाव कक सालायनाय दिनेनि टॉपिक इंखा वातेमल मार्केटिंग ताको बखु नर कल खेने तापक दे 2326253 नैथाम नै दक नै बाथाम ओ नंबर नरक बेतवां तापोसरनि किचिन नरनि ताको फियाबा फारिताबुक जों खाना लायग्रानाय लब मंग्रसाप मुंग खरंग दिवान नंदीगोपाल जमातिया मार्केटिंग ताकबुख केंद्र रचाप उल कल खन तापक दी 2326253 नई थाम नई दक नई बाथाम ओ नंबर आं बैकरंगी तीन टॉपिक खा वातिमल ताबुक ताबुक खनालाइने फायदे रचाप मुंग लब मुंग रचाप मुंग खनालाइने फायदे

हेलो हेलो मानजुई मानी तो हा मार किसी ताकूक वाते थाके बसिक से थोकना पुलानी वाते तुगना मुसूंगानी कक्त सेराय तस तस हाई सिरे जैसे पुखरी ने तई कक्रक टोंथुन कौन तई कुक्रक कचांग टोंथुन वाते तुकुई टोंथोकमानी अब तेकिसा जुदा आसे तुमफ्लामनोलो वाते दबसापन फाइटन बसाकमा मिसिका हिंके अब टोंथोकमानी जुदा अ वाते अब कैसा टोंथोकमुं अब कैसा मुनिमुं अ वाते अब सामुं तांगने रोकने बागे मुखतंग थाइकतंग खलाइने रोकने बागे कैसा कपाल कैसा लामा अब कैसा फ्योग जाकमु मार्किजिंग ताकुबको कॉल खाली 2326253 नहीं थाम नहीं डॉक नहीं बात हम 2326253 और नंबर उन लोग बेतोंग तापोस तो नहीं किजिंग दरों ताकुब तीन ही नहीं तो पिंग का वाती मॉल मुनि सुरक्षनो जंगजाल बुखी क्लायो जंगजाल वो बुखी क्लायो तक ट्रोवरियो क्या बा ओ वाती मॉल अब बरोक नहीं कैसे थांगना नहीं लामा वाते नि जरा वाते तुंगमने जरा तुंगमने चांगमने जरा चांगमने अब तंगा सेनांगो निकीचे ओ हाबार मचांगो हाबार नि कैसे हमारी अब वाती मल क्या बा अब कैसा जंजाल बोंगी मानो मारे किसी ने ताको बुको नरक कॉल खाई देंगे 2326253 नई थाम नई डॉक नई बात हम और नंबर नरक बैठे होंगे तापोस तो ने किसी ने ताको तीन टॉपिक का वाती मल फादे रसाप मुंग थाईसा खना लायने वाती मल ने नरक ने कॉल नासिंगते नासिंगते सिने ओरांग सा खाना तो फिर रसाप मुंग थाईसा खना लायने।

0: दिल्लीनी आसुक थाय तेवाइसा हायनो हाय किफिल नाफ्रे दिल्लीनी आसुक थाय आसुगो सिंहासन आसुगो 1940 ख्रीष्ट बिसि तिनि हाय सालनो नेताजी सुभाष चंद्र बसु कंग्रेस याकरे कंग्रेसी नंखरे फॉरवर्ड ब्लॉक हिनि कायसा बदल कताल संसाव 1944 ख्रीष्ट बिसि तिनि हाय सालनो ब्रिटिशनि सेंक्राग्रक आसामबाय इम्फलन गोरोंसा ख्लायो गोरोंसा हा ख्लायो 1975 ख्रीष्ट बिसि तिनि हाय सालनो प्रधान मंत्री मंत्री बखरक इंदिरा गांधी जरूरी अवस्था साखलायो तिनि हाय सालनो 1996 ख्रीष्ट बिसिव सौरभ गांगुली क्रिकेट थंग्रों इंग्लैंड नि लॉर्ड्स बिने पुइला टेस्ट थंगमानिव गाहामकै थंगमानि बिसिंति ख्लायबो रान 131 ख्लायो आसा स्कोर गाहाम ख्लायो 1982 ख्रीष्ट बिसि जों तुमुं नाहारि नायखेंकाय उफिले नायखेंकाय भारतनि हाकतर बेलाय खाखामानि साल मुम्बाइयो आफनो बम्बेयो एयार इंडियानि बिरखुं देरामा बाय बरक गोबां थै जाव फारिताबुक उफिल नायलायनो हायुं हाकतर बखागो 1815 ख्रीष्ट बिसि तिनि हाय सालन फरासिनि बुबाग्रा नेपोलियन बोनापार्ट उल्सा सिंहासन याकारो जों तुमुं नासिकि नायखेंखे 1940 ख्रीष्ट बिसि तिनि हाय सालन जार्माननि सेंक्राग्रक बाहायनि रक पेरिस दखल ख्लायमानि उल फ्रान्सन याक्ति सेनानि बाध्य ख्लायो 1941 ख्रीष्ट बिसि तिनि हाय सालन नाच्चि जार्मानि सोभियेट इउनियननो केबेंगै गोबां मा सेंक्राग्लाङै जप्रबनानि सेंगो आक्रमण ख्लायनानि सेंगो 1944 ख्रीष्ट बिसि तिनि हाय सालन मार्किन प्रेसिडेंट फ्रांकलिन रूजवेल्ट बिनि सेना रक्न सैन्य रक्न पुनर्वासन निनानि कायसे लाइबुमा रुगजाक केरंग सयरिब आसिक जरा खानाबायखा लाइ थांनाय बिसिरग तिनिति साल तामो तामो पाति थांका
1: आशिक जरा जों खोनालायखा लाइथांजाक लाइबुमानि कग्रग तिनिनि हाय सालो तामो तामो पाटिखा ताबो खोनालायनो हगबानि कक तिनिनि हगबानि कग जों खोनालायनो नायरग्रा कायमेनो रोगै कक नायरग्रा तो सिनिया केबो गोरै जों जतन नायरग्रा जाओ ताय फल फकलानि बिसिङो ब कायसा बेलायखेनो नांखौमानि फल फकला खबजाखौ सिरिसि तिनि सिमिन नारग्रानो जों मताय आदायरग सामुङ फोनाङै फायो ताय चिनि साग गाहामनि बागैबो नारग्रा बेलेखेन जाव नारग्रा अमहाय फल फकला जे फल फकलानि मुं सापान सामुं नाङियाखोरै रमदि बिनि बकुर बिनि बखं ताय बिनि बोतै जों नारग्रा दाब बेलेखेनो जाओ ताय दाबनि बोतैनि ककथ जों सानानि कक गोरै दाबकनियाव कलमा मलहगै बेलेखेनो नारिकरानि दाब जों नोंना नांगौ दामनि हिमालय नारिकरानि दाब सिनि साकनि दै गोरै जराव दै मानथग्रोथानि बेलेखेनो नांगौ ताय नारिकरानि थक जों जाबो जाओ ताय बोखनायावबो फुलो कक खुर्सा ताय क्लायो जिनि भारत हाखतरनि साउथ इन्डिया वाखै नेरग्रानि थक बाय मै जालायो मलनि जत जरानो जों नेरग्रा मानो

फुसफुस उंगेखौ बखा सबमनि हामया ख्लायो बखा सबमनि फान्न गोरै ख्लाय खिबियो तुमुं हकु नंखायंखाय नियुनिया बाय मानजाखनानि लाय थांगो दौय थांगो काहाम क्रों तंगमुं मा तंगनाय चामुं काहाम मा जानाय मुक्रि आसि सुगै मा थुनाय दे सालब्रमब्रम सामुं ख्लायिं एखाबा ब्याम रख्लायि कलम दै माखि ख्लायनाय आबो बाय जिनि बसागो बेमार कासनानि फान बाङै थांगो गोसां जागाव एखाबा रुमु जागाव थांयै मा तंनाय गोसां जागाव तुमुं थांगा हेंके आफ्रो रिकुतुं मा चुमनाय दे तुमुं सित्रा जागारगो पलिउटेड जागारगो थांगा हेंके आफ्रो मास्क रगमा थुबनाय दे अमहाय तंख रुमु जागारगो थांयै मा तंनाय निमोनिया उंखा हेंके भाइक्लाय साखनाय डाक्टार निमोनिया अब ब निमोनिया मानजाखा अब डाक्टर नायग्रानाय अब बैक्टीरिया नि बागै दांखा एखाबा अब भाइरस नि बागै दांखा अब बरक नायै बैक्टीरिया नि बागै हिंकेबा एंटीबायोटिक बिथिरियो भाइरस नि बागै हिंकेबा आ लुम्मानि तंमुं चामुं नायाकय बरक बिथिरिनाय एखे सत्राक नि मानजांगा बागैबो अमहायख्लाइन बरक बिथिरिनाय एंटी फांगल बिथि अब हाइके तुमुं डाक्टर बाय नायजाखाय निमोनिया बेलाय किरिमा सिंसा वानामा सिंसा बरकनो बुथारनाय बेमार फानो डाक्टार बायनाय जाखायंखे हामै मानो फियाबा जतनसिलाय कक कतरंखा बेमार मानजाक मानिसलाय बेमार मानजागियासानि कासुमासे जतनि तंमुं काहाम बनि बाखै टीका मानानाय दे ताबुक साइपाइनमा हाय तंमुं रकमा तंनाय निमोनिया बेमार बाय चालानि बागै आसेक जरा खानाबायखा साखामग्रानि कक

फारीगेसन खानालायनो चुमुइनि साम्प्लि अरे साबमुं न दिनै रेसाबना गोरों जेन दाखौ जलायबाय रेसाब जाग्रा साबमुं

0: थुमै तनलायानो जों हायुंनो थाङै नुगै मानै आफानाव नुगै माबाय बाक्साजों नगतंतुतिनो सिवानो सायमानानो अबहायके जों सिनि सिमरक जों तनानि नांगौ फारिखे जों टेब सायमालायानो अबंखा चिनि ट्रेडिशनेल जे थोंमुं ट्रेडिशनेल थोंमुं रकनि बिसिंग चिनि भारत हाक्टर हायखेबा चिनि त्रिपुरा हावो चिनि त्रिपुरा हावो ट्रेडिशनेल स्पोर्ट्स रकनि बिसिंग तामो तामो दं आबो इयागुला जों सायमालायानो चिनि इन्डियाव चिनि ट्रेडिशनेल स्पोर्ट्स रक तामो तामो पुलाव नरक न सुंजाग अकनिं बिसिंग जेबा कायसा मानखांखा सादि ट्रेडिशनेल स्पोर्ट्स चिनि त्रिपुरा हास्तेनि आबो तामो तामोङैमान हायखे ते कैसे हमके ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इन भारत हाक्टर ताम तामो तंगईमान स्पोर्ट्स एंड गेम्स अब हईमान खाका रक सकें बेलैखान जाना अब रक बहन जो थानो सैमानी नागो जो थे सिमिया जो आर नई प्लेयार याफानंगीमानो हाई के जो बक्सा बक्सा चीन बड़ रक बड़ी लांगमाओ गेम्स एंड स्पोर्ट्स रक थिया स्पेशली चीन बुरी रक चीनी बुरी रग आस गेम स्पोर्ट्स रगो थांगिया जे थाना रग बड़ कहाम नखलाय गया बड़क दाबो गोबां बुरी रग ना दी थंग रंखाई बड़क ने सक मांग बलैन एक्टिव अंगी दंग बेलैन गरंगी दंग बेलैन ग्राक फिजिकल बड़क ने फिटनेस दंग गरंगो आबोबाय गोबां बुरी रग चीनी बुरी रग स्पोर्ट्स जे गाहाम खाने रगे बड़क अहन एरेंगे तंगियासै बड़क कैसे कैसा से बगो बड़क गरंगी थी बड़क बड़क ने लामा गाहाम नौ मानी जो नगो आबो नादी जो थी वो जो थाना चीनी और चीनी थमूंग दाल विदाल दंग जो त्रिपुरा ने सना थे चीनी और थमूंग चीनी और पद्रे पद जो दफा गबां दंगाई मानी जानी जानी दफानी थमूंग बहन जुदा जुदा दंग चराय रंग थमूंग जुदा दंग अक्रा रंग थमूंग जुदा दंग अब कक थैसा बैकेबा थमूंग गायसाबाय सबाय मानिया हाबा नरक जे सैमामा जराते सदे जो चीनी थमूंग रक गायसाबाय थागियाबा जो गोबां मा फानो खबै फानो सैमानो जेसे सैमान आसन गाहाम चीनी चीनर तो जो दाल विदाल बरक दंमाबा चीनी थमूंग जामूंग नमूंग कानमूंग चीनी कल्चार ट्रेडिशनल ट्रेडिशन बेबाग न जुदा जुदा अंगी मानो गोबां बंगी मानो गई सना थे जो बेबाग न बेबाग न जो एक्सेप्ट मा खाने हाइजे आनी सिमी से बुमूंगना नांबा आनी दफानी सिमी से बुमूंगना नांना आनी दफानी थमूंग से बस्का गुजुगना नांना हाबा हाइक गया बेबाग न अब जो एक्सेप्ट मा खाने आनी न आं बुनी याफार तैन बुनी नब जो माइया जगलाइने फारिगे नाइने नजराव कक दुग सब दं हेलो
1: हेलो
0: बेलाखे लामसग दाखुक नो
1: आं जागारदल निबिधान
0: बेलाय लामसग दिपर काहाम सागरा दिखाय द हाय ना हाय सिनि दाखुक बिधान थासिङो कक दुबाय गरंनाय नं खनाबला बेलाखे लामसग दाखुक हाय ना हाय सागरा देखे जों सालाय दं माने बेचेब
1: ইন্ডিয়ানে যে ট্রেডিশনাল স্পোর্টস হইতে বানি নে কাবাডি খুকু এ মালখাম্বা জাতীয় স্পোর্টস হইতে তো গেম হইতে পাব হকি নু রম যাব ইয়া ভাই তা পো তে বো জাতারে পতঙ্গ কো বং মানো
0: আও আপন বেল কবাং মানু তঙ্গ চিনি তো হায়দা আবু বেবং যে মান সাক মান খাঙ্কা বা জং মা সালাইনি তা বগুই তোমার ও
1: যে মেন মেন স্পোর্টস নো তুমি থাকাতা
0: আও বেলাই হামবাই আও বেলাই কেন হামবাই তাকুক ন ন খনাই জং চিনি পান্দা চিনি তাকুক থংমুং রক ন তৈ নে বেলাই কেন ব সাইমান বা একটিভ ফনি মান আও জং সাইমানানি নাগো थमूंग रगंखा नगो थमानी जुदा जिन इनडोर गेम आउटडोर गेम हई दंग गबांक थमूंग रग आउटडोर गेम रगे बेलैखेनो मा फिजिकल जे बड़ रग ने एक्टिव कूक बड़क मा थंगो बा थंगी मानो बड़क सिमिनो

0: नरक नि बागै नरक जे खनाना मुसुं जाक फनि रसाप मुं रक न जों खनाय मानलायनाय अजराव नरक अगदुक नि बिसिं तै क्रंदि तै नरक नि खनाना मुसुं जाक फनि रसाप मुं रक न नरक खनावै माननाय हिंदी तै कक बरक रसाप मुं अबनि बागै दाक्ति दाक्ति खलायनाय कगदुक बाय क्रंनानि बागै जायदक दि कगदुक खलायै सिदा सिदि नरक नि खनाना मुसुं जाक मानि रसाब मुंने कक थाइन सादी हाइकबा तके नि बुमुंग तै रसाब नाय रक नि बुमुंग तंखबा मानै तंखबा सादी फियाबा रसाब मुंने कक थाइ स्राय स्राय के सादी तै पुइलानि जे रसाब मुंने कक थाइन न सादी कचा रक नि साकांके आबो जों रुतुगै मान लायगला खनाय मान लायगला बुजि मान लायगला तामनिके सलाय सलाय आबो हाय रसाब मुंग तंगै फानो मानो गे नों खनाना मुसुं जाक मानि जुदा यां आं बुजि मानि जुदा रखानो गै मानो अबनि बागै स्राय स्रायके सायनानि सायमानानि जिनि कक नोंथों हिन्दीनि कक नोंथों स्राय स्रायके सायमानानि बागै जायदकदि नायदि अरावो ग्रोंते ग्रोंते साथे साथे स्राय स्रायके सायमानानो स्राय स्रायके कक वार्ड रकनोबो स्राय स्रायके सायमानानो हिन्दीनो बाहायनो जों मानो सायमानो बुजिअ होनि हमपानो गोबां माने बिनि जे ककनि बिसिङाव दङ गोबां मा ग्रामार दङ जों आबरकनबो ते उच्चारण दङ स्राय स्रायके साय सानानि बागै जायदक दे चिनरनि कक दकनि मारै हायनाहाय सायरेवानो नरक्त साय मानैनो दङ 0381232625 3 कक दकनि मारै ग्रोंगै नरकनि खानानाव जों जाक मानि रोजाबुंलक नरक खानावै माननाय फारिके अजाराव कक दक साबतं नायनायलायानो हेलो हेलो
1: हेलो मैडम
0: दीपक कहाँ ताको
1: दीपक कहाँ नॉन मी ताको पहले बंग इस फसिंदर देवर मा
0: पहले बंग नहीं बलाय खेला हम सोगो ताको ना नो सागरा दिखाए
1: तो का बोलो हिंदी खाने में मला
0: कने न्यू खाने में नहीं
1: अंगे हिंदी तंत्र खनावा ना
0: पायल बोले चोरी बोले पायल बोले चोरी बोले
1: है
0: खनारनाय दंखांके तो दा सावनो याफोर नामु जों दो सादे
1: अजन थाखनि दानि मेलन गे पेगो जलन मान बिदेस गे जबु जबु जलनि चिन्ता खु बिखराय गे बिखरम गन्दनि बाय अन्दलि गे आसुनु मेडम गे नों माखा मेडम
0: बलाय केन हामबाय औ हामबाय हामबाय खनाय तंनि चिनि बान्दा आतै जे खनाय तंनाय रक नरक गोरोंनानि बागै सायदकदि जों खोनालायनो चिनि दाखौ खोनाना मोसंजाक माने रोसाब मुंन आबनि सै सिकां ककदक साबो फाय दंखा साबोताम साना मोसं दंखा फायदि खोनालायनो हेल' बेलाय खोना दिपर काहाम बुखुक
2: बाय अनल किरागाटनि ओमफ्राय आं मानदायनि मोनाय रुनु
0: ओमफ्राय
2: माइक्रवासिटि बरम
0: औ बेलायखेना हामबाय बेलायखेना हामबाय औ आं नरगनो साका दासिंग पैलावन साय सिरायके सादि होनानै अबनि बागै जेने दाखौ खाना मुसंजाक माने रोजाब मुंजों आं रमैमानखा पायल बलि होनाय सावब पायल बलिया चुरी बोले पायल बोले बोले कंगना अबहैसी दो रसापनि ककथाइके आनाम अनाम निजागो टकेने बुमुंग 1992 बिसिव अ रसापमुं अंखरमानि दै रसापमुंग रसापनाय रकंखा

0: बेलाखिना खाना त रिसा मुङचेङ खाना मन लाइख्या चोरी बोले पायल बोले बोले कङ्गना कुमार सनतै अल्का याक्ने गई रिसाप जाग रिसाप मुङ अनाम तकेने फरेका चिङ हाइन हाई ककटु ग्यासकमाने बखाक थाङलायने साबताम बबाहाय रिसा बुङ खाना मुसुङ जागै गोरोंनानै मुसुङ जागै त्राय ख्लाय दङलायनो हेलो
1: हेलो मेदाम दीपर कहाम
0: बेलाखिना दीपर कहाम साबुंखा बोलनी छाइतं
1: उदयपुर महारानीनी राजु
0: राजु बेलाखे राम नाम सगो ताखुक राजु शादी के द
1: आं नि दिसाम खनाय के आ अंदाज नि दिसाम तोके न मों का अंदाज सो
0: अंदाज
1: ए दिसाम नि कोक थैंक के और अब इस कना हो बी दिसाम नि कोक खाल
0: और अब इस कना हो स्कना होबे इश्क ना होबे आओ तो हांगे तो खाना लाने ओ रब्बा निनी और चाप मुंगा बदो बलाई खेना हम बाई करेंग माने बगे फरिगे चेंग चीने ताकुक शर्नमाला राधा का संगम टोके नी रसाप मुंगा खाना ना मुसुंग जगई कोई हर माने रसाप मुंगे कोक थाइंग के ओ राधा तेरे बिना लता मंगेशकर भाई शब्बीर कुमार रसाप जाग रसाप मुंग खाना लाइने फायदी राधा का संगम टोके नी और रसापुंग

0: बेलाखिन खाना तो रुचा मुंग चेंग खाना मान लाइका बरे मिया छोट मिया नी तके नि रुचाप मुंग बरे मिया तो बरे मिया और रुचापुंग रुचापुंग रुचापनाई रकम खा उदित नारायण ताई सुदेश भोसले बाहर साप जाग रुचापुंग फारिके चिंग अजराब कक दोगो नाइने छापतों हेलो
1: हेलो
0: दीपर कहाम ताकू
1: दीपर कहाम
0: दीपर कहाम शाबंग खबर नि साइतों सागरा दी
1: कोई फंगने गोविंद तिकुरा
0: हेलो
1: हेलो कोई फंगने गोविंद तिपुरा
0: गोविंद त्रिपुरा ना बोरन सिम साइतों कोई फंग नि साइतों ना गोविंद त्रिपुरा आओ सागरा दिखा दो
1: जान तेरे नाम नि ता खाना रे
0: जान तेरे नाम जान तेरे नाम और तोके ने और सब मुन खनार ना है आओ बलाई खेना हम भाई कोक दो बे करंग माने बागई खनाई तो नीचे ने पांदा आओ चिंग खना तो तोर सब मुन तेबो खना लाई नहीं फड़ी खना लाई नौ जरा वो चिने ता खोक रविंद्र कोई हरमाने प्यार तो होना ही था जे तो रसापुं अबो प्यार तो होना ही था तोके नी नो टाइटल सॉन्ग बसाओ अजनबी अजनबी ने रचाप मुंगो प्यार तो होना ही था नहीं तो करे प्यार के होना ही था रचाप मुंग प्यार के होना ही प्यार तो होना ही था और तोके नी नो रचाप मुंग फरीके खनालाय नो रचाप मुंग ना

गाहाम के सैमाया दे सैमाया बंगे जो गोबां मा बरंग खा बी थो बक्सा बक्सा नगो अकला रो बसैना रंगा हाइन फीयाबा आम कैसे बेलैन डिमोटिवेट खालामी जाए जो जी सिगला रंग एवं जिर रंग अब हाइन जो मजे सैना रंग मजे सैना रंगा जो अब हाइनो खा बक्सा के कथा लाइ साम मा तंगलाइने जिनी थी बागे जिनी हुकुम मकुम बागे फीयाबा सिगला रखे बखाओ फान गनां दे फान गला बड़ो वन सू बेल जुदा अब बागैनो कथाल साम दानखे जो जिनी अकरा रंग विशंती बड़ सिम मानो दे अकरा रबसराय विशंती कैसा तमिलनाय ओपिनियन मानो अब हाई रंग जो सपोर्ट खाने नागो अब मारकी सिंह नरक सैमाना दिनी ओ जिनी टपिक इम्पोर्टेन्ट अफ यूथ इन लिटारेचार नई जो साल मानी किसा मिसा अब हाइन बसकानी सालब जो टेब सैमालयन सिलयन फादिंगे आं खाखलायो नरक कलम किसा सामानी आगोल नरक बेलेखे न खनाता जगह आं खाखायो फादिंगे जो तब हाइन हाई सिंह किसा जरा दंगा जो तब रोजाम खनाबो नाइलयन

0: তবে গল্পে যাবার আগে নিয়ে নিচ্ছি ছোট বিজ্ঞাপন বিরতি।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरी वाले में तो एचआईवी से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं।
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है।
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: आप लोग कल आज हमारे यहाँ खाना खाइएगा सर। मेरे पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं।
1: काहे के वास्ते?
0: सर वो भाभी को देखना चाहते हैं।
1: काहे के वास्ते?
0: सर सर
1: हम आएगा, हम जरूर आएगा। हम अपने बेटी की खुशी के वास्ते किसी का भी दरवाजे पर माथा टेक सकता है, लेकिन खुद का नहीं टेक सकता है। कांता, काहे के वास्ते?

दिलों के सागर में तूफान बनी है गंगा क्यों अनजान, पिया की बाहों में आकर लिपट जाती ना क्यों नादान। दिलों के सागर में तूफान बनी है गंगा क्यों अनजान, पिया की बाहों में आकर लिपट जाती ना क्यों नादान। कौन करता तुझको मजबूर करो ठोकर से उसको चूर, कौन करता तुझको मजबूर करो ठोकर से उसको चूर। हमारा जन्म जन्म का प्यार गले लगना ही होगा रे, आना ही होगा रे, आना ही होगा रे, इश्क पुकारेगा

चलेगी यहाँ कलेजे पीर, चलेंगे वहाँ हजारों तीर, खींच कर दौड़ी आएगी किसी राजा से मिलने ही।

थी किसी राजा से मिलने ही तोड़ कर रस्मों की दीवार चलो चलते दोनों उस पार तोड़ कर रस्मों की दीवार चलो चलते दोनों उस पार फरिश्ते हमें बुलाते हैं साथ जाना ही हो।

यहाँ दो रूप है एक के, यहाँ नजदे उठा नजर देख के। जब उसकी मोहब्बत में तुम्हें तू वही सूरत नजर आएगी प्यार तू कौन क्या है मन के सिवा ये।

जो अदा है इशारा है प्यार का, ओ दीवाने तुझे चाहिए और क्या। दुर्गा मन की सदा भी।

0: सलाम अलैकुम खान बाबा, ईद मुबारक।
1: वालेकुम सलाम राजेश, तुमको भी ईद मुबारक। तुम किधर है? तुम यहाँ पे ईद का चांद की तरह आता है।
0: खान बाबा, ये मेरा दोस्त अमर है।
2: ईद मुबारक।
1: तुमको भी ईद मुबारक।
0: आपसे एक जरूरी काम था।
1: बोलो बोलो बच्चा, जान हाजिर है। विलायत? विलायत क्या चीज है? हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो तुमको चांद पे भेज सकता है। बैठो बैठो, पहले तमाशा देखो।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HRD से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते

판 크락타이 끄다울 클라이미아 나하리 샥타리 샤몽 땅위 동호히니 샤카 자타이 문트리 수산도 조드리 디니 땅로 거트로 자타이네 쿠니 꺾람 차라이마 반도로 버 어꺾음 샤카 꺾람 차라이마 루쿠 빌리 클라이밍 셉노 테보 크락 스라이치 세테 루쿠 함크레 룩자 클라이티 산호 판 복싱 자카 자타이 문트리 살부름니 낭마 마니 카티 토니나 타이 세브리마 셉노 काम क्लाइना नांगमनि साख थाना बागै तांफांनो दागिका हास्थेनि मालमाता बाबायो खुरचजोंनै थाय हामक्रायंखा थाय नुइसाय नुइचिबा नुइचिदक रां बिसुव काहाम मानमारि मुनि मानखा रावो चुकुचिचार हिनि साखा मालमाता हामक्राय मन्त्री छुटां छुदास दिनि आगुर तलावा नायखुंनि हाबानग नुइसाय नुइचिदक नुइचिसिनि रां बिसिनि हास्थेबेर नुककलाम छालायमे पानो बकक साखा बतेब साखा थांनाय बिसि किचावा हास्थेव आ एरिमाव हामक्रेमा नुकजाखा अ काम मानमारि नुकलग प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पद योजना कतर बाजाटङहिनि बखुर चाका आकाशवाणी आगुटला केन्द्र न ककतुमा खनाय तंबयो आकाशवाणी ककतुमा अपडेट माना बगै लग इन क्लाइदि www.newsonair.com न्यूज ऑन एयर एप ताई ट्विटर बाय फेसबुक प्लेटफॉर्म एयर न्यूज एलाच यूट्यूब नाइ न्यूज ऑन एयर ऑफिशियल आबल करिबो आकाशवाणी आगुटल केन्द्र ने ककमा अपडेट मानाखाय ट्विटर बाय एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज आगुटल फेसबुक एयर न्यूज आगुटल ता यूट्यूब आकाशवाणी न्यूज आगुटल नाना नांगना तीन सिमी चेंगजागने आसाम कामाख्या मंडब नखा सालबुरी अम्बुबा चितेर त्रिपुरा अम्बुबा चितेर मानजगो हास्थिनी हिंदू तंगथारना जाजानाय बरैरक आपनरगै आगुरतला लक्ष्मी नारायण बारी उमा महेश्वर कालीबारी नखबै जुदाद्रा मंडब तंगथार जाजानाय रक गथमानुक जागो आपनरगै बानिकब संजा जागो तांग नायखुनि मन्त्री तिंकु राय तिनि तांगन कतनि सेबुक एमप्लयिज स्टेट इन्सुरेन्स कर्परेसन एबा ESIC नि फिल्टाम रिजनल बुटनि कक्लाम पान्डवा चुकफांखा अ कक्लाम पान्डव ESIC नि सेबसाब मान थकमा बांदैना ताय हामक्राय गोनां तांग बुतां रकन सामुङो चारिना बागै सुक्रुबै कक्लाम सालाय जाखा बोसान जुलाइ तालि सालनि चिनियो खयरपुरनि चिब्रि मुताय मान्डब श्री सिटिनि खाटचि मुताय चेंगेना खाटचि मुताय ताय बानिकनि तियार ओंमानतै तिनि सालतां जालानि जाला नायकल फनि तांग कक्लाम पान्ना का शंका आरो आसु पंखा एमएलए रतन चक्रवर्ती पानो सालतां जिल्ला परिषदनि पजा मान्जा काजको विश्वजित शिल्प मान्जाखा थंलाइमानि कक्टुमा बिसि नैसाय नैसिद फुटबल हायुं कापनि पाइथाक थुमुंग मिसर गोल्ड थाम साबाय निउजिलेण्डन मेचेनखा अल्जियान केबेंगै कप्लाय इंमाउल तिनि भारत हाकतनि जरा हर दामचि छती थामचि ग्रुप जेव आर्जेन्टिना बा अस्ट्रिया थंगाने आबुनि उल ग्रुप आय थमुंकायनिंगाने हनि दाम नै छती थामचि फ्रान्स बा इराक ताय खना फुं आछ्रि छ्रि दाम बा छती थामचि नरोय बाय सेनेगाल थंलायने त्रिपुरा फुटबल एसोसिएसन नायको जारन थार्ड डिभिजन लीग फुटबल बाथाय मुंग तिनि थमुंकायनिंखा उमाकान्त मिनी स्टेडियाम पहिला थमुंग भारत रत्न संग गोल कायबा बाय सिमना तमागुरि फुटबल क्लाब न मेचिनखा आबुनि उल अ थुंखलाउन इकफाय फुटबल क्लाब गोल कायनि बाय स्वामी विवेकानन्द क्लाब न मेचिनखा बोसखान ताम निचिब्रा हासन जता हांकर फेरंखक गबांग वाते वावन ने नबत बेनक हजा क्लैरिका खना सालनि तुमारि साखौ थामचि थाम डिग्री सेल्सियस তাই খামন নৈচি ব্রী ডিগ্রি সেলসিয়াস গানে গিনি টঙ্গনা তিনি সালনি তুমারি সাগর থামচিনি দশমিক ব্রী ডিগ্রি সেলসিয়াস খাম নৈচি বা দশমিক বা ডিগ্রি সেলসিয়াস পাইথক ককটমা বুবাগ তাই সাপড় রাষ্ট্র বক্রক খনা খরক দকচিবা ন পদ্মবিভূষণ পদ্মভূষণ তাই পদ্মশ্রী সকরিয়া ফরনা মন্ত্রী বক্রক থাঙ্গাই বিশিষ্টনীয় সলাই মুরক বেবাগ লোকরং পৈতন তাই বক্রাক খলাইনেও কঠোর চাষের মুখা मंत्री अक्रा छाका लोक हमक्राय गनां तंसनाय तंगते बेबा बर मुनसिन बरम मानथानिबो सेराय सेराय के तंगना नांगना ककमा तिनि बागे अरन पाइखा उलि ककमा आवाय गना खना फुंग दामसिन छति बृजिवो

0: গান অন্তহীনে আজ শুনছিলাম কিশোর কুমারের গান। আজকের মতো গান অন্তহীন এ পর্যন্তই। এখন শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হিন্দি সংবাদ।
1: আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে লভলিন নিগম। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
3: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोष

0: दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
1: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सके।
0: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: निभाया, देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बंबू जी बैठे हैं, जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था, करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे, चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
2: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
4: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
5: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धा पंख, हरिदासपुर पारादी, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनापुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
6: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई।

0: महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री वचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में सीआईएसएफ के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और विपुल एम पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken. मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात

0: करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
1: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अल काबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर

0: साद बिन फ्रीदा अल काबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहेल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किन स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।